0: खरे खरे इनस आ केजे मांगो दे छया खरदो राल खर छिस ने छेन थांग रे खरे सम राल छे उरबे
1: इने
0: नेसु इन छे नेसु मेन मार्छु दे गोगे बा अले गुदा जागे शामो गमी सांगमा शोयुल नमजु यास छेला बा ने गोछो मयो